0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक भी तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन के दुखन काग जोन लवे
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिगर जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को छले।

0: पूर्ण कर्ता प्रसोए अवगत अगोचर
1: प्रवेका
0: नाथ निरंजन गोचर गंद
1: अपने
0: आप आप ही चर्जा
1: रूप आप
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश।

0: अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: ये
0: सर्व कला आपे परवीन अपने आप आप उधार अपन ऊंचा अपने आप नेरा
1: कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विस्मर है विस्माद
1: अपनी गत जानो आप
0: जय शल शेद भेद समाया
1: किसे भी आपत माया
0: आप इसको अपे आदेश
1: गुण का ना ही परवेश
0: एक एक भगवंता
1: कौन चेत किस लागे चिंता
0: अपने आप पतियारा
1: कौन कथे कौन सुनने हारा
0: ओ बेअंत उचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: आप रचो प्रपंच आकार
1: तय गुण मैं कीनो विस्तार
0: पाप पुन्न तय पई कहावत
1: नरको स्वर्ग बिछावत।

바대 무릎별이 살성 सतगुरुने पार बख्शिश रहमत करके अपना जाप आप करवाया सारिया संगत धनवादी हाँ भाई जो चल के आए हूँ सतगुरु रहमत कर आप सारे की हाजरी दर प्रवान कर जिन्ना समा भी निकले उन्ना ही थोड़ा है। भगत कबीर जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी करी आदि होते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। गुरु घर आउण दा लाभ ही लाभ है, इत्थे घाटा कोई नहीं। सो आओ बध चढ़ के आके गुरु के चरणां च हाजरियां लवाया करिए। सतगुर कृपा करनगे, सतगुर रहमत करनगे, सानू अमृत वेला बख्श। धनवादी हाँ सारिया का भुला चुका दिखा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करै करावै स्वामी सा मसलत परवान। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर, हर संति एह विद जाती। क्यों बार बार साहब जी ने वचन किया भी जपना है,

0: माप काटौ जम की फांसी। कहां करो जाति कहे करो पाती, राम को नाम जपो देन राती। रांगण रांगौ सीवण सीवो, राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खासम त्यावो। सोयने की सुई रूपे का तागा, नामे का चेत हर स्यों लागा। नामदेव जी का चित लग गया है, नामे नारायण नाही भेद, कोई फर्क ना रह गया। कदों नामे का चित हरस्यों लागा, जब चित लग गया गरीब निवाज असा जोर नाही। तुसीं रहमत करो साडा चित जिहड़ा सुरत जिहड़ी है उह शब्द विच टिक जावे, गुरु संगत विच टिक जावे। लोक सुखीए पर लोक सुहेले बन जाण, जो जो माई भाई दूरों नेड़ियों चल के गुरु बाबा जी के दरबार विच पहुंचदे ने, मेरे साहिब सब दी हाजरी प्रवान, गरीब दी भी हाजरी प्रवान। बेअंत भुलां दीआं माफ़ियां, लोक सुखीए पर लोक सुहेले। सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु जी का
1: वाहिगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। सतकारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे हैं सतकारयोग रागी भाई जसपाल सिंह जी श्री पौंटा साहब वाले अते उहनां दा रागी जत्था। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी हुणां दा संपूर्णता दिवस 30 तरीक नूं ऐतवार वाले दिन आ रहा है, उस दिन नाल नाल संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले, संत बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वाले, संत बाबा मीहा सिंह जी सियाड़ वाले अते संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडां वाले उन्हां महापुरशां दी वी याद मनाई जाणी है अते गुरु घर विखे निशान साहिब दे चोला साहिब दी सेवा होणी है। सो सब संगतां ने इन्हां समागम विच वध तों वध हाजरी भरनी जी। आओ कीर्तन नाल जुड़ीए। वाहिगुरू जी का खालसा जी वाहिगुरू जी की फतेह।

इतनी हाजरी प्रवान करना। सारी संगत असीस बख्शियो कि सतगुरु साढ़े सारिया ते कृपा करन, साडा एक एक श्वास वाहिगुरु के सिमरन नाल जुड़ के बीते। ये अरदास करांगे गुरु के दर तो सारिया की झोली च खैर पै जाएगी। लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभापे मिले आओ नंसर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

विसरना ही पूरन गुणतास। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन हुए निहाल, जागुर देखा सामने।

ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साधक संग जे मार के घने जाहे ना कोसा हरका नाम ऊहा संग तोसा जे पैठे मां अंधुक भारा हरका नाम संग उजियारा

तुम पर शाम जहां त्रिखा मन तुझ आख रखे तै नान घर हर अमृत बरखै भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम द्रे जन कोट हर जस गर्त संद नरात हर राउ खद साध कमात

हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर सराते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। अरकी भगत मुगत भव करे, नानक जन संग खेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनंत दर दुख लथा। नाम की महिमा संतृत बसै, संत प्रताप दुर्त सब नसाय। संत का संगपट भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई। नाम तुल कशबर न हुए, नान गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक। बहु शास्त्र बहु से मृति पेखे, सर्व टडोल पूज सनाही। हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप दाप ज्ञान सब ध्यान, घट शास्त्र से मृत वखयान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनक प्रकार किए भव जतना, भव दान हमें भव रतना। शरीर घटाए हमें कर राति, वर्तनेम करे भव भांति नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरा चर जीव है। मां उदास तपीसर थी वाय, अगर माए होमत प्राण। कनक सब है भरभूम दान, न्यवली कर्म करे भवासन। जैन मार्ग संयमत साधन, निमक निमकर निमक निमकर शरीर कटावा है। तो अभी हमें मैल ना जावे, हर के नाम समसर कशना है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे। छुटा गर्भ गुमान ना मंत हुटा, सोच करै दिन सर रात। मन की मैल ना तंते जात, इस देही गौ साधना करे। मंते कबू ना बिख्या ठराय, जल तो बह बहुदया नीत। शुद्ध गाए काची पीत, मन हर के राम की महिमा ऊच। नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सियाणप जमका भाओ व्यापे। अनक जतन कर त्रिशना त्रापै, एक अनेक अगन नहीं बुझै। कोट पाप दरगे नहीं सजै, छूट सनाही ऊब पयाल। मोह व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगरी जमडन। गोविंद भजन बिंद नहीं माने, हर का नाम जब दुख जाए। नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साथ जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, सा संग में छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साथ जना की सरणी परै। जिजन को प्रभु दर्स ब्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे बमान।

जाए अष्टपदी। दस वसूले पाछे पावे, एक बस्त कान में खोट गवावे, एक भी ना दे। दस भी हेर ले तो मूढ़ा कहो कहा करी, जिस ठाकुर से हो ना ही चारा था कि वो की जय साध नमस्कार, जाके मन लागा पर मीठा, सर्व सुखता हूँ मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, आगंत शापनी दे रास, खात पीत बरते आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर शाले, ज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीता भी खोवे, बहुर इसका विश्वास न होवे, जिसकी बस आगे राखे प्रभु की आज्ञा, माने माथे उसे चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सरपुर होवत जान अनेत। बिरकी छाया सुरंग लाभ, बिन से मन पछताप है, जो दिसे सो चारण हाल, बटे उत अंध अंधार। बटाऊ से जो लावे ने ता गुआत ना आवे, के मन हर के राम की ब्री सुखदाई, कर कृपा दान का बलय लाई। मिथ्या धन तन धन कुटम सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज उपन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ अस्थि आसु बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया फे खस्ता, मिथ्या ध्रोह मोहभिमान, मिथ्या पशु प्रकृत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवा हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहे, मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे, मिथ्या नेत्र पेख पार अत्रे रुपाद, मिथ्या रसना पूजन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार गोता, मिथ्या मन पर लोभ लुभा, मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या भास लेत बेकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल, दे नानक हर हर नाम लय, वृति साकत की आरजा। साज बिना गये हो सुचा बिरथा, नाम बिना दर अंध, मुखावता के दुर्गंध। बेन सिमरन दिन दयन, ब्रेथा बेहाय, बेग बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन मिन ब्रिथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार धाम। तन तन तेजन जेकट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रह तबर कशबर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर बेखना गाहू बीन। अबर विदेश आब ना करे, आबद जाबद जनमय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीखत राय संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण पराता। करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत, नेरा पाप सयानम सगल ते राहत। सबग जाने आदम की रहत, जिस भावत सिलाई लड़दाए, थंतर अंतर रया समाये, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जब नान करी।

सकल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी बार बुकारु महाब्रह्म ज्ञानी का ना ही तंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता बदबंधा ब्रह्म ज्ञानी कवे सोफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म

नर्मलमंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाइये ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे ना जाए अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत ना बार नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब बरहात ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी भरी नान ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी सलोक उतार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक वर्ष सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना वर्ष मान में प्रीत निरंजन दर्श पार्थर रूप न पेख है नेत्र सादगी टहल संसंग हेत संकरना सुने काबू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे मन की वासना मन ते ठर है इंद्री जित पंच दोगते रहत नान कोट बदे को ऐसा अपरस वैष्णव सहोज सुपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हुए बिन कर्म कर तो वह नह कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बाशे केवल भगत कीर्तन संग राच है मंत्र अंतर सिमरण गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक वैष्णव परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग बंदे बिनसे सगला परम कर बुझे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे तस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कराये नित नीत मंत्र अर्भय विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे

सोहभदिष्ठा का जंत आपस को करबंध कह आवे जन्म मरे बहु जौन भरमावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा करते गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख भावे धर्मंता कर कर भावे त्रिन समान का संगना जावे बहु लश्कर मान खुपर करे आस बल पितर ताका होए विनाश सबते आप जाने बलमंद खिन में हो जाए बसमंद किसी न बदे आप अहंकारी धर्म राय तुझ करे खुवारी गुरु प्रसाद जागा मिटे बमान सो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनंत तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं तरबे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन कहो नानक दागी निर्मल सोए जब लोग जाने मुझते कछ हुए तब उसको सुख नाही कोय जब जाने मैं किश करता तबला गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी भी तब लग नेचल नाही चीज जब लग मोह मगन संग माए तब लग त्रमराए दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हम छुट्टा है सहज घटे लक उठता वे त्रतना आवे माया पाछे पावन अनक भोग बिख्या गे करे न त्रपतावे खप खप मर बिना संतोख नहीं गौ राजे स्वपन मनोरथ बिरथे सब गाजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़े बागी किसे प्राप्त होए करण कराम आपे आप सदा सदा नान घर जाप करण कराम करने आस के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आप आप रब सोए जो किस गिनो सपने रंग सब दे दूर सब हूं क्या संग बुझे देखे करे विवेक आपे क्यापे अनेक मरे न मन से आपे ना जाए नानक सदी रया समाये आप उपदेशा समझे आपे रचया सबके साथ आप किनु आपन विस्तार सब कश सुखाव करने हार उसे भिन्न कह हो किशोय थान निरंतर एका सोए अपने जलताप करने हार गौता करे रंग आपार मन में आमन अपने माहे नानक की मत कह ना जाए सात सात सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद करे मखयानी सच सच सा सब कीना कोट मदे कने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूपा सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटकड़ सुनी सरवन बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सुरोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपति संत के दुख ने यार जा कटे संत के दुख न जमते न छुटा संत के दुख न सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख न मत हो मलिन संत के दुख न शोभा हीन संत के हते को रखे ना कोई संत का दुखन थान भ्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जय करे नानक संत संग निंदक भी तरह संत का दुखन ते मुख भवे संतन के दुखन काग जो रवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन कृपाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को शलाए संत का दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नी चाहे संत दुखी का था को नाहे नानक संत भावता होए भी कत पाहे संत का नंदक महत अतताई संत का नंदक खंड न पाई संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज तेहीन संत का नंदक दुखियार दीन संत का नंदको सर्व रोग संत का नंदको सदा बिजोग संत के नंदा दोख में दोख नानक संत भावता उसका भी होए मोख संत का दुख सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मेहत संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते ठराए संत का दुखी को ना ही ठाहो नानक संत भावे तलाए मिलाए संत का दुखी अद बीजते टूटाए संत का दुखी कते काज ना पाहुचा संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना फिरता की लोथा संत के दुखी की जड़ किश ना है अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी गवरना रख न हार नानक संत भावे तले उबार संत का दुखी एहू बिल लाए जो जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भुखा नहीं राजा जो पाप इंद्र ने त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ ते लखेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुखी संत मिथ्या कहत कृत निंदका तुरी पया नानक जो तस भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ू पे जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सह काइया संत का दुखी ना मरे ना जी वाइय संत के दुखी की पूजे ना आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना तृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया गिरतना बेटा कोय नानक जाने सच्चा सह सब गढ़ तिसके हो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से त्यावो सास गिरा सब

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक समर नाम आधार और पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कार प्रसो प्रभ सम्राथ दृढ़कर गहो नाम अर्भत ए तन संचो भगवान संजना का निर्मल मंत्र एक आश राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठता मैं सोदन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मी सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखत राय सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे परवान मन प्रबुद्धो हर कह नाए दैद स्थाप ते आ बैठाए तागो बिघन ना लागे गोय जागे हृदय बसाए हर सोय कल दाती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव भवन से पूर्ण हुए आस भगत भाई आत्म प्रकाश तिदकर जाय बसे बनासी कहो नान काटी जम्पा सी तद विचार कहे जन साचा जन्म रह सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमन प्राण आधार अनुक भाव न छूट न हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तू ले क्या लपटावे मूर्ख मना सुध मीत घुटम हर बनता इनते कहाओ तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहाओ गमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदगी तस बुझे ना बेगाना ना मिसार नानक पशुदाना गुर की मा तू ले याने भगत बना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो परा नाम जपावो संत गैद रात गत बावो सार पुछ सदर को राम सह सुभाए नान गुन गाहो गुन गाव त्रि उतर समैर बिन जाय हो मैं बिख फैर ओए चंद बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाहल शाड़ सियान सगली मरा सास संग भावे सजतना हर पूंजी संज करो व्यवहार यहां सुख दरगह जायकार सर्वदनंतर एको दे कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जा पेको सालाह एक सिमरे को मन आहे एक कसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरा पूर्ण पूरे प्रभ्याप अनक विस्तार एक तब एक रात बराशत गए मंत्रंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक जाता सलोक फिरत प्रभ आया परया तव सरणाए नानक की प्रा बेनती अपनी भगति लाए अष्टपति जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा भूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत गुरु प्रभ की रतनीत ए गोट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभसार प्रभ की दुष्ट मास खुए हर सभावे बृंडा गोहे जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण मुर्ख नए डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग बजे चाओ साध गए संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगा संदिल्य बलाग बट भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लाई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किन्नो सदा निहाल बंधन गाड मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया छुन्नी सरदा सब पूरी रब रया स संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरा जय काल न भान सो क्यों बिसरा जय किया जन सोग बिसरे जन सब कुछ दिया सोग बिसरे जय जीवन जिया सोग बिसरे जय अग्न में राखे गुरप्रसाद को बिरला लाख सोग बिसरे जय भिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गंड है गुरपुर तत यह बुझाया परपना नानक जन त्याया साजन संत गुरु ए कामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभर नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तनो सीशार सर्व कल्याण सुख निधना बुढ़ जात भाई विश्राम सगल दुखावतनास नानक नाम जपो गुंतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर एही स्वभाव नेत्रो पेख दर्श होए मन बिकसे साध चरण तोए भक्त जना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रया सर्व समाए प्रभुख शांत प्रभक शांति न दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्वघटां करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भक्त पाए लावे मन हीत हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वय गुंड मुक्त मोख पाए ए गनम खरके गुण गायन गराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वह भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भले सो करणी शोभा तन मंथिर दे बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहोन्वा

अंदर जामे रहो व्याप प्रतिपाले जीवन भवान जो जो रचो सो तसे त्याद जिस भाव तिलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या जन करनहार नानक जान्या जन लागा हर के नाए तिसकी आसना विरथी जाए सेवको सेवा बनयाय हुकम बूझ परमत भाई इससे प्रणय विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन दूर भय निरवैर अंदर बुझे गुर के पैरे लोग सुखिये परलोक सुहेले नानक हर पर व्यापे मेले।

छोड़ बेनती करो साह संग अगन सा करत रहो हर तरंगे पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साह संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक गुरु बजागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी गाहे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनद कमावत होत उदार आवतरे लोके निस्तार सफल जीवन सफल तागा संग जागे मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महंत गाय माथे नानक उदरे तनकाय साथे स्वर्ण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण ही सेव की सेव आल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संरचना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक रिभी खेब हमारी प्रभ की उसत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुरु नाम जिसमन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण हो प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते उज पाए स्थान भवर नाम यावन जान आरतन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिदना विनिद बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या जाप विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब गए मात सकल देव दास सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए बल तिजन कै मुख भने गुरु नानक नाम भजन मन सुने ए निधान जपै मन कोय सब जुग मैं तागी गत हुए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सकल मतान केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट बराद साध संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटे जाके मस्त कर्म प्रभाए साध सरन नानक थे आए जिस मन बसा बसा सुने लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभ जीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुर्लाभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम माए समानी दुख रोग बिनसे भय परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सबते उज ताकी शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुख मनी सब ते ऊजता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अर्वे अदे संग दे से नुवास तंग पे से नुवास तंग मे तामे नुवास तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे

है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमाण है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पजंग प्रयाशंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने।

है। केसर बत्र तरान है, केसर बत्र परान है, केसर बत्र देश है, केसर बत्र पेश है, केसर बत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, केसर बत्र झाप्य है, केसर बत्र थाप्य है, केसर बत्र पहन है, केसर बत्र मान है, केसर बत्र इंद्र है, केसर बत्र चंद्र है,

भागे सो सर्वानुराग त्रिपुक्त स्वरूप है अछेज है अछूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है परजुगते अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त

हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं,

ब्रह्मांड अनुपाव नास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अन सिंध अंग आसने अपहंग उपमाम पार गत में ते उदार जल थल अमांड देश वसे अपहंड जल थल महंत देश वेश बेअंत

शांत वै प्रसाद करुणालय है और काल्य है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्वे उबारण है।

मुकद न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिनका नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी, पीव हो अमृत सदा रहो हर रंग, जप अवसारंग पाणी।

लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो देव जाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ।

है हर रंग मजी ठै रंग गुर तुठै हर रंग चाड़िया फिर बहड़ न हो भी पंग हर नाम हर रंग है हर रंग मजी ठै रंग गुर तुठै हर रंग चाड़िया फिर बहड़ न हो भी पंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठै हर उपदेसिया

मन मुखी फिर आवण जाना अंग हर प्रभ चित न आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दोहचारिया हर रख हो अंगी अंग

लोक की प्यारी आसन जोगी जति तपि सन्यासी बहु तीर्थ भ्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा धर अंत तौ मरना ताते सेबियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करा जमना रहाऊ आगम निर्गम ज्योतिक जन बहो बहो व्याकरणा तंत मंत्र सब औखद जन अंत तौ मरना राज भोग अर छतर सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहु न उबुरना कहो कबीर इं रम जम पौ मेठ जन्म मरना आसा

कहां गए देही के संग रहते सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते रहाओ बजावन हारो कहां गयो जिने हो मंदर की ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल भय संग तेरी इंद्री का बल था का चन रहे कर ढरक परे है मुखो न निकस है बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर और थाका तेज सूत धर रमते

राम राय सो दूल लोह पायो अस बड़ भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतिक आए कोट ते तीस ओजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले है पुरख एक भगवान आसा सास की दुखी ससर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर कै बिरह जरो रे मेरी मत बौरी मैं राम बसारियो किन बिद रहन रहो रे सेज रमत नैन नहीं पेखो एह दो का स्यो कहो रे रहाओ बाप साब का करै लराई माया सद मतवारी बड़े भाई कै जब संग होती तब हो ना प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधया मैं राम करमत सुख पाया आसन हाम घर सूत तन

खंड को करता कर सो हो ही रहो जननी केरे उधर उधर कुम है पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में राखा ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह धन्ना पूर्णता हु को मातरे जी डराही आसा सेख प्रीत जियो की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से सचया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया रते इसक खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पो

जिस आसन हम बैठे केते वैस गया। कत्तक कुंजा चेत डाओ साबन बिजुलियां सी आले सोहंदियां पिरगल बाहड़ियां चले चलन हार बिचारा ले मनो गंढेंदियां छे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछै असमान फरीदा केवट किन गए जालन गोरा नाल अलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे घर पहला तेरा नाम करे चरण अठिया जे मन उरसा होए करने कुंगु जेर लै कर अंतर पूजा होए पूजा की चै नाम ते आई है बिन नाम।

बैठा सोडी पाकिश राम दासत गुरु कहा बैठा सोडी पाकिश राम दासत गुरु कहा दिच्चे पूर्व देवण जिस दी वस्त से करिया दिच्चे पूर्व देवण जिस दी वस्त से करिया बैठा सोडी पातशाह राम दास सतगुरु कहा बैठा सोडी पातशाह राम दास सतगुरु कहा पूरन ताल खटाए अमर सर्व ज्योत जगावे पूरन ताल खटाए अमर सर्व ज्योत जगावे उल्टा खेल खसमता उल्टी गंग समुद्र समावे उल्टा खेल खसमता उल्टी गंग समुद्र समावे दित्ता लइए अपना अण दित्ता कछ हाथ न आवे दित्ता लइए अपना अण दित्ता कछ हाथ न आवे फिर आई कर अर्जने बुद्ध संसारी गुरु कहा फिर आई कर अर्जने बुद्ध संसारी गुरु कहा जान देशा सोडियो होश अजन जरिया जावे जान देशा सोडियो होश अजन्म जरिया जावे करही की वत करे रहा करही की वत करे रहा गोड़ी महल्ला पंचमा थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो।

दर कदे न छोड़े, ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सच

0: राजमिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, राजमिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छोड़े, टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छोड़े, नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े, नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े।
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत रहेगा, तू ठाकुर ऊच भगवान, नानक की प्रभ बेन
0: अपनी भक्ति लाए,
1: मांगो दान
0: ठाकुर नाम।
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत रहेगा, तू ठाकुर ऊच भगवान, नानक की प्रभ बेन अपनी भक्ति लाए, मांगो दान ठाकुर नाम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, भुल चुक माफ, तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धन्यवाद, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उठ गई सभा मलेश की, कर कूड़ा पसा, डांका बाजे फतेगा, निरंकार अवतार, नानक गुरु गोविंद सिंह पूरन गुर अवतार, जगमा जो बराजी, अब चल नगर में जा, श्री सचखंड के दरबार, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहेगुरु जी, तुम दाती ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम मारे, निमक निमक तुम ही प्रतपालो, अंबारक तुमरे तारे, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा दे साहू, जिस पास बैठे सोही है, सबना दावे साहू,